पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़े कूड़ बसनहा कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनहा कूड़ काया कूड़ का।

सत्संगमा होए दारू पाप कटे तोए सचता प्रजानिए जा आत्म चित करने वास सतगुण कुछ कह बैरह करने वास सत्संगमा होए दारू पाप कटे तोए नानक बखाने में।

हे प्राण नाथ गोविंद, हे कृपा निदान जगद गुरु, हे संसार ताप अरण करुणा में सब दुख हरो, हे शरण जोग दयाल है दीना नाथ मया करो। शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक,

जो सबसे का जानोई आसा महल्ला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू देहें सोई हो पाई रहो सब तेरी तू सब नित आया जिस नाव कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुग वाया तुद आप विछोड़या आप मिलाया तू दरिया सब तुझे ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछोड़या संजोगी मेल जिस नौ तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाणे जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद मिन दूजा अवर ना कोए तू कर कर वेखे जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़े पहले निवासा पानी पावक तिने किया पंकजों मोह पग नहीं चले हम दिखा तह डूबियले मान एक न चेतस मूढ़ मना हर विसर तेरे गुण गलया रहो ना हो जति सती नहीं पड़या मूरख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिनकी शरना जैनो तू नाही विसरया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेर किते न काम मिल साध संगत भज केवल नाम श्रम जाह लाग पव जल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहो जब तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जन्य हर राया

शर्मा जप तप संयम धर्म ना कमया सेवा साध न जन्या हर रया कहो नानक हम

0: एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया शब्दो तंगावो हरी गेरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मिसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समर्थ स्वामी सो क्यों मनो मिसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहेबा क्या ना ही कर तेरा करता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या ना ही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जैनो भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जैनो इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटह जिस दियाँ एह वडियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंशव तित कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तसुख होआ तित कर अन्न हद बाजे आनंद सुनो वड़े भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पये सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा भारे बूरे बिनावंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा भारे बूरे बिनावंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनाहद तुरे मुंदा मणि महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पइयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पहुँचाए तिसका हुए उदारो ए बस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग त्रिये सब नानक ब्रह्म पसरो। श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई तरस भया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन सीवे हरिया तरस पया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तुम मात पिता हम तुमरी कृपा में कोई न जाने तुमरा ऊचे ते ऊच सगल समग्री तुमरे सुतरता तुमते हो सो तुमरी गत मित तुम ही नानक दास

उदर है राव साहब जी के पाठ की अरदास है जी। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी, आप जिया दे दर ते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी, तिल फुल पेटावां दर प्रवान करनिया, यात्रावां सफल करनिया।

आप जी करो कृपा अपनी अमृतमयी बाणी विचों पावन पवित्र हुक्म दी दात बख्शो। हुक्म अनुसार जीवन जाउन दी समर्था बख्शो। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी सिख पढ़ दे सुन दे

श्री वाहे गुरु साहेब जी, जातसरी महला पंजवां, कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

जिस होए कृपाल सोई बिद बूझै, ताकी निर्मल रीत कोई जाने कवन इहां जग मीत। जिस होए कृपाल सोई बिद बूझै, ताकी निर्मल रीत रहाओ। मात पिता बनिता सुत बंदप, इष्ट मीत अर पाई, पूरब जन्म के मिले संजोगी, अंत को न सहाई, मुकत माल कनक लाल हीरा, मनरंजन की माया, हा हा करत बिहानी अबुदय, ता मैं संतोख ना पाया, हस्त रथ असव पवन तेज, धनी पूमन चतरंग, संग ना चलियो इन में कछुए, ऊट सदायो नंगा, हर के संत प्रह प्रीतम प्रभु के, ताके हर हर गईये, नानक इया सुख आगे मुख उजल, संग संतन के पाईये, हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभु के, ताके हर हर गईये, नानक इया सुख आगे मुख उजल, संग संतन के पाईये। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

अगम अनंत अनाद आद जिस कोए न जाने, शिव बिरंच तरत्यान नितै जिस वेद बखाने, निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई, पंजन गणन समत तरन तारन प्रभ सोई, नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रसना रसै, श्री सत नाम करता पुरख गुरु रामदास चित्तै बसै, गुरु समरथ गह करिया तुरुव बुद्ध सुमत समारन को, फुन त्राम तुजा फहरांत सदा अगपुंजत फुन त्राम तुजा फहरांत सदा अगपुंजत रंग निवारन को, मथुरा जन जान कही जी साच

आवत है मथुरा पन पाग भले उनके मथुरा पन पाग भले उनके मन इच्छत ही फल।

आदि जुगाद अनाद कला तारी त्रह लो अगम निगम उदरन जरा जमे आहरो गुर अमरदास